Well, ladies and gentlemen, this is me, RJ Tasir. And RJ Tasir, बिल्कुल मैं पश्तो में ज्यादा बात इस वजह से कर रहा हूँ कि मैं आज टांग वालों से बहुत सारी बातें करने वाला हूँ. और टांग के जो लोग हैं ना, वो मुझे पसंद हैं. हाँ जी, ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला. So be ready, टांग वालों, पहाड़पुर वालों, डेरा इस्माइल खान वालों, ग्लोबल एफएम 91 सुनने वालों, सुन रहे हो? आज ये प्रोग्राम केसन का है, तो केसन के हवाले से बात होगी. लेडीज एंड जेंटलमैन, नोट कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा तवज्जो से. जी बिल्कुल, तवज्जो आपकी दरकार है. जी मोहसिस खवातीन और हजरात, तमाम खवातीन और हजरात, सोने प्यारे, मन मोड़े, खूबसूरत, हसीन, चाचा, मामा, दादा, दादी, यानी कि हर उम्र वाल का सान चुकम दिया गादी टूल वारी चे उस तासु खिदमत चे हाजिर दा. जो खबर कहूं, जो ढेर तवज्जो सरा तासु तवज्जो में पकार दा लिश्कु तवज्जो को कतासु चेरे वजन ज्यादा हुई. वर्जिश कहो, वर्जिश कहो लगवाओ, वर्जिश ते टीम नो उर्मिंदाओ या वर्जिश हो को हो ब्यामो पप्शु बंदी दर्दु ना भी जोड़ ना मु खुश के और वर्जिश न दर्द ना कीजिए नुवारो. ए खलका, ए खलका, ए खलका वायरबा जुता सुतशुम यो दासी प्रोडक्ट चिकुम नाम दा केसन. वेट कम पेट कम हर्बल फार्मूला. जी लेडीज एंड जेंटलमैन, केसन वेट कम पेट कम हर्बल फार्मूला दा यो पकई दा यो दवाई दा पकई और दवाई द्वारा बुरना मर का वाला सोचा. कुदरती तरीके सरा वजन और दे खेटे चर्बी दा गेड़ा ना दा गेड़ा गेड़ा गेड़ा गेड़ा पैसा नु कुछ दा गेड़े मुरवतली आओ पकड़ बने ची चल मुकद आओ मखदा कदा सोरता चल मुनो अक्षाता जी कम कटू ना प्रातवी अगो ता हवा मावा नो रसीजे. जी ग्रानो और विदुन को ओगो दे पारा स्पेशली अगो खल को दे पारा चे चा गेड़े गटे सली दी आओ गेड़े गेड़े ची कम दी कमाउल ग्वारी वजन कमाउल ग्वारी हजमे मसले दा हजमे ही न कीजी लिज गोनी खुराक की आओ भिया दी मैदे मसले भी पसर पाने भोज भी आओ जी उल्टी वर्ता वर्ची या जिसम चे दासे मादा दासे शयान दी चे कमो इखराज यानी दी कब्स मरीजान चे कम दी स्पेशल. चलो जबा दी कब्ज मरीजान जिक्र जरूर को चिचा तक कब्ज भी यानी खुराक हो कि खो ब्या खुराक चिकम दा आखा यानी वाशुम तदुलर सी और पेट खेट है चिकम दा गेट है चिकम दा आखा न कभी चशाए. जी तशाए नहीं हो जरूर तकलीफ भी नो ग्रानो अरविदुन को ऐसी टूल खुआएं दे उरूना कशरान मशरान दे हर उम्र वाल चिकम दी ओगो दे पारा केसन वेट कम पेट कम हर्बल फार्मूला पक्की दा दे अगु खलको दे पारा दा चुकुम खपल वजन कमल ग्वारी कम खपल हजमे बेहतरे जोड़ा उल ग्वारी दे खपल जिसम चुकुम

6336 ये बंदक नंबर माने बात तासुक को चोको को काल बाव को आर्डर बाव को जिग्रा नो रोदन को दादे मुशा दा पके शिकुमार होस्टल वाड़ी शो कम खाले आगो दे पारा दा ग्रानो अर विदुन को नुस्से दा परेशान हो घटवाला दा खुराक मु ना हजम कीजिए या नो दासी वजूहात चुकुम लो वजे ना तासु परेशान है यो यानी तासु कैलरीज चिकम भी आगा ज्यादा चली दी फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक्स या वड़ू चे पाखे सिर शायन चिकम भी अगर वजे ना तासु घट सिली जो जिस्मानी सरगर्मियानी या वर्जश मुनी भी नो ब्याबो वजन ज्यादा चलाई या कचेरे तासु ता खूब नदर ची आओ तर निमी निमी शपे पूरे विशियो या जहन चिकम दा पगवांदे यो बोझ होने महसूस हो और हर वक्त टेंशन चो सीजो ला नूरा दासे कुरानी मतलब युवा कुरानी दासे राजी करने चे मशरानी खाट हुई कशरानी पसे खाट हुई अनोगो दे पारा स्पेशल केसन वेट कम जी वेट कम केसन वेट कम पेट कम इस्तेमाल शुरू को खुजो और विदुन को आखलिक चिकुम ज्यादातर चीनी जी या जिस्मानी हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी दिसनानाओ या सरु चे दासे मरसु नहीं चे गुरुवा जेना तासु दवाई गाने दिल ज्यादती इस्तेमाल करी वो स्ट्रेस ता टेंशन मन खत्म की नो अगे सुरत चे तासु इस्तेमाल को केसन वेट कम पेट कम पके दाबे तासु तमिला भी जी खपल निस्तु दुकानदार अनुसरो पशु अरविदन को याद सातु दगे सरा शिलना जी देर मिनटा यानी निमा घंटा कम अज कम वाक अपनी जिंदगी से जरूर रावलो तेज तेज शोरो आओ उबो इस्तेमाल हम जरूर कहो ज्यादा ना ज्यादा को खूब पल जरूर पूरा कहो चिरंग जी वामर विदा खबर चलो जी नंबर घुसते दर सरा 03-04-99-25-388 पति नंबर बाद बता सुमा तक काल को और मासरा बाद दी प्रोग्राम से शामिल है जो जी

వెల్కమ్ బ్యాక్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్, గర్ల్స్ బాయ్స్, मुझसे जो सवाल करेंगे पहाड़पुर वालों, तो आप सुन लो, पहाड़पुर वाले सुन लो, सुन लो, आप सुन लो। मुझे बड़ी अजीब और बड़ी खुशी हुई कि मुझे कल जब एक दोस्त बता रहा था, आप में से कोई कॉल कर रहा था और बता रहा था कि तासीर भाई पहाड़पुर में हर तरफ केसन केसन है, तो मेरा एक ही सवाल था, मेरी जान बता दीजिएगा आखिर क्या वजह है, क्या हुआ, जादू किया खलील भाई ने, जादू किया खलील भाई के पास, जादू है जी खलील भाई के पास, जादू है, नहीं जी खलील भाई के पास तो जादू नहीं है, तो खलील भाई ने क्या कहा है, मुफ्त दे रहा हूँ, नहीं भाई मुफ्त ही नहीं दे रहा था, फिर क्या हुआ, खलील भाई ने कहा ये लेना है, जरूर लेना है, जी हाँ ये कहा था, अच्छा ये मेरे कहने पर कितनी मरतबा एक चीज आप ले सकते हो, मैं अगर आपसे एक सवाल करूं, जितने भी सुन रहे हैं अगर मैं कह दूं कि एक चीज खरीदनी है, एक चीज लेनी है, तो यकीन मानिएगा मेरे कहने पर शायद एक मरतबा आप पैसे खर्च कर लें, लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या दोबारा आप एक चीज जो फायदा ना दे वो आप खरीदेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि भाई फायदा नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज जो बार बार आप खरीद रहे हो उसके पीछे एक रीजन है, एक साइंस है, एक माइंड है, और वो ये चीज है कि भाई ये चीज फायदा दे रही है। मौजूद खवातीन हजरात, जब कोई चीज इंसान को फायदा दे रही होती है, जब जिस चीज से इंसान को फायदा होता है, ये एक कानून है, दुनिया का कानून है, एक माइंड का कानून है, एक साइंस है, जब इंसान को किसी चीज का फायदा होता है तो वहां पर वो इन्वेस्ट करता है, पैसे खर्च करता है। कभी भी कोई भी शख्स ऐसे नहीं हो सकता, हाँ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो समझदार ना हो, जो अक्ल के हवाले से थोड़े से कमजोर हो, जिनको समझ कुछ ना आ रहा हो, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, उनमें हो सकता है कि बार बार क्या करें, हाँ जी दीवार के सर टकरे मारोगे, नहीं बार नहीं मारेगा, तासीर जा रहा है, दरवाजा नहीं दूसरी तरफ है, तासीर दीवार के साथ, तासीर का टक्कर लगा, सवाल पैदा ये होता है क्या तासीर दोबारा इस दीवार के साथ टक्कर मारेगा, अब भाई नहीं मारेगा बाबा, एक मरतबा तो उसकी टक्कर लग सकती है, दोबारा वो नहीं मारेगा, दोबारा अगर टक्कर मारेगा तो कौन क्या कहेगा बोलिएगा, हाँ तासीर भाई मेंटल डिस्टर्बेंस है, केमिकल लोचा है, आपका दिमाग जो है तारे हिल गई है, बिल्कुल यही कहा जाएगा, तासीर दूसरी मरतबा क्या करेगा, दरवाजे की जानिब जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले बात करते हैं आपकी कॉल जा रही है, आपकी मोहब्बतें सलामत रहे, मैं आप लोगों की मोहब्बतों का मशकूर हूँ, कर्जदार हूँ, आप लोग मोहब्बतें देते हैं, आप सभी का शुक्रिया, लेकिन एक बात समझाने वाला हूँ, और वो ये है कि पहाड़पुर वालों ने जो बात की है, कहा कि पहाड़पुर में केसन केसन हो रहा है, हर तरफ पहाड़पुर में हर कोई कह रहे हैं मैं केसन लेने जा रहा हूँ, अब भाई क्या कॉस्मेटिक्स लेना है, क्या कौन सी कंपनी का लें, केसन का लीजिएगा, अब मैंने पेट कम करना है कहाँ जाऊँ, कहा जाता है कि जाए जाए भाई, वो केसन वालों ने

पेट जो है वो रोक रहा है। मौजूद खवातीन औजार, वो मेरी बहनें, वो मेरे भाई, वो मेरे बुजुर्ग, वो जो बैठे हुए हैं, उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आप हाजमे की वजह से परेशान हैं, मैदा जो है उसका निज़ाम डिस्टर्ब है, वो कुछ आप खाते हैं, आधी रोटी खा लेते, लेकिन आप महसूस यूं कर रहे होते हैं कि 10 बंदों का आपने खाना खा लिया है, अब गैस बन चुकी है, दिमाग पे बोझ बन चुका है, चक्कर भी बाज़ औक़ात आ सकते हैं, मतलब किसी कैफियत होने लगती है और पेट जो है वो फूल चुका है, ऐसा फूल चुका है कि पानी पीने की गुंजाइश नहीं है। सवाल पैदा ये होता है, आपने आधी रोटी खाई है, ये पेट इतना क्यों बढ़ चुका है, पेट क्यों इतना तंग कर रहे हैं, पेट इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, क्या आपको पता है ये क्या है, कौन सी वजह हो सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन औज़ाद, मेरे प्यारे, मेरे बुजुर्गों, मेरे छोटों, आप सुन लीजिएगा, आपको बताता चलो, इसको कहते हैं गैस के मसाइल। गैस बन जाती है पेट में, गैस बन जाती है, निज़ाम इन्हज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हाजमा नहीं होता, खाना जो है वो आप जब एक धोने वालों की सूरत में भी डालते हैं तो आपका मैदा फूलने लगता है, वो गैस्ट बना लेता है, इसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, मेडिकल की ज़बान में गैस्ट्राइटिस इसको बोलते हैं। और आप इसका हल ढूंढना चाहते हैं क्योंकि आपका दिल चाहता है कि कुछ कह लो यार, मेरा भी तो हक है, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत, इतनी बेहतरीन दुनिया बनाई है, इतनी नियामतें हम लोगों के लिए पैदा किए, काश मैं भी इनसे हाज उठाता, मैं भी लुत्फ लेता, पसंदीदा गाने नहीं गा सकते। तो भाई ये निज़ाम इंतज़ाम आपका डिस्टर्ब है, हाजमा डिस्टर्ब है, मैदे पर काम कीजिएगा, मैदा दुरुस्त सेहत तंदुरुस्त, अगर आपने मैदे को दुरुस्त कर लिया तो आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अगर मैं इस पर बात करने लगूँ, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो चीज़ें हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलती हैं, आप नफसियाती मसाइल का वो शिकार हो रहे हैं, आपको बार बार क्या हो रहा है, वहम हो रहा है, आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि पता क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको डर लग रहा है, आपको खौफ आता है, आप ये समझ रहे हैं कि शायद मैं चल तो रहा हूँ लेकिन मैं चलते हुए अगर गिर गया, यानी आप आगे का सोच रहे हैं या पीछे का सोच रहे हैं, रात के 2:30 बजे आपकी आँख खुल गई, आपको अचानक ख्याल आया, ओ भाई मेरी शादी हुई थी 1992 में, वो मेरा उस टाइम निकाहनामा बना था, वो निकाहनामा कहाँ होगा, आप इस चीज़ को सोचते हैं, उठते हैं, संदूक ठोलते हैं, अलमारियाँ खोलते हैं, ओ बाबा नॉर्मल हालत में इंसान इतना नहीं सोचता, आप ये सोचने लगते हैं कि भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, परेशान हो रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हैं, ओ बाबा परेशान होने की क्या ज़रूरत है, इलाज कीजिएगा, ये नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल मत कहिएगा, ये आपका क्या हो चुका है, आपके निज़ाम इन्हिज़ाम की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है जी, ये ओवर थिंकिंग है, इसको कंट्रोल कीजिएगा ना, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे जी, ये इसके लिए हम आपको बताएंगे केसर वेट कम पेट कम हर्बल फार्मूला। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैं वेट कम की बात कर रहा हूँ यानी वजन कम तो पेट कम कब की बात कर रहा हूँ, वो जी निज़ाम है, निज़ाम की वजह से पेट बढ़ गया, पेट क्या हो गया, बढ़ गया, वजन जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया है, वजन और पेट तब ज़्यादा बढ़ता है जब इंसान का क्या होता है, इंसान का

आप परेशान होते हो? परेशानी अच्छी लगती है, टेंशन आधी आधी रात तक जागते हुए अच्छा लगता है, सारे सो जाते हैं, आप आसमान को देखते हैं, तारे गिन रहे होते हैं। बाबा ये आपके लिए मसाइल और बढ़ सकते हैं, इसके अगले स्टेप पे अगर मैं जाऊं तो नफ्सियात के और बड़े मसाइल शुरू हो सकते हैं, तो बेहतर ये है कि आप मंगवाइएगा केसर, वेट कम पेट कम हर्बल फार्मूला। मौसिस खवातीन हजरात, सिर्फ 15 दिन में अपना वजन कम कीजिएगा। यस बिल्कुल, सिर्फ 15 दिन में आप अपना वजन कम कर सकते हैं। बाकायदा इस्तेमाल से आपका रिजल्ट मजीद भी बेहतर हो सकता है। अगर आप सिर्फ 15 दिन इस्तेमाल कर लेंगे, 15 दिन टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा और क्या बताया, जाते हुए वजन कीजिएगा और जब इस्तेमाल कर लें तब भी वजन कीजिएगा, चेक कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका वजन कम होगा। यहाँ पर 2-3 बातें मैं अर्ज करूंगा, वो ये है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा कीजिएगा, अपनी जिंदगी में पानी का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा। साथ ही साथ रोजाना 20-30 मिनट वॉक किया करें और नींद 8 घंटे आपने जरूर लेनी है। मौजूद खवातीन हजरात, आपके आसपास करीबी दुकानों पे मिल सकता है, नहीं मिल रहा तो खलील भाई का नंबर नोट कीजिएगा 0344-936-3366, 0344-933-3366, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और अभी ऑर्डर कीजिएगा। डोंट वरी, बिल्कुल डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में, आप दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं, केसन की रेडियो चैनल से इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं यानी लोकली डेरा इस्माइल खान पहाड़पुर या ठांग में नहीं सुन रहे, तो डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं, कहीं पर भी आप ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर करना आपका काम है, पहुंचाना केसन का काम है। ठीक हो गया जी, तो परेशानी को कह दे टाटा बाय बाय अस्सलाम वालेकुम। अब जहनी तनाव जहनी दबाव नहीं होगा और ना ही नींद की कमी को हम रहने देंगे। जी बिल्कुल, अब लाएगा आपकी जिंदगी में इंकलाब सिर्फ केसन। वेट कम, मिलके बोलिएगा मेरे साथ, मिलके बोलिएगा खवातीन हजरात, मिलके बोलिएगा, क्योंकि मिलके बोलने से भी वजन कम हो सकता है। मुझे यकीन है आप मेरे साथ मेरी तरह एनर्जेटिक होकर जब बोलेंगे और जोश होकर बात करेंगे तो भी आपका वजन मेरे साथ बोल के, लेकिन ये सिर्फ फार्मूला मेरे साथ बोलने में है। आप अगर खुद से बोलेंगे तो फिर आपको एबनॉर्मल कहा जा सकता है, लेकिन मेरे साथ कहेंगे तो आपका वजन पाओ जरूर कम होगा। कहिए मेरे साथ केसन, वेट कम पेट कम पक्की। जी बिल्कुल लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, तमाम मेरे मौसिस, मेरे प्यारे, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे छोटे, मेरे नन्हे मुन्ने लिसनर जो मुझे कॉल करें, आप तमाम को बहुत सारा प्यार, आप तमाम का शुक्रिया कि आप मुसलसल कॉल कर रहे हैं। नंबर नोट कीजिएगा, नंबर बता देता हूँ, आप नंबर नोट कीजिएगा, फिर मैं उसके बाद आपको क्या करूँगा, उसके बाद आपको मैं शो में शामिल करूंगा और आप मेरे साथ बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन औज़ात, मैंने बातें बहुत सारी कर ली, मुझे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पर जब बोलूं तो तफसील से बोलूं, बात करनी है तो तफसील कैसे करनी है। अब आपकी फीडबैक की बारी आती है, आपको आपका फीडबैक शामिल करेंगे। नंबर नोट कीजिएगा, नंबर तेज नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी तेज नहीं बताऊंगा। जी जी जी जी जी

देखो देखो शबरा उस्ताद, मेरा काम जे रहा है ओ तो आपको दसा वड़ाई, ठीक है ना। मेरा काम दसा वड़ा है, इस्तेमाल करण तुहाडा काम है। ते असा क्लियर गाल करें ने कि बाबा तुसा इस्तेमाल करो ते उस दे बाद दसो कि किवें तुहाकू किवें लगे ते तुहाकू किवें फायदा दी है। ये दसावण तुहाडा काम है बात।

Sí. Sí. ठीक है बहुत मेहरबानी शबरा उस्ताद ते बिल्कुल कॉलर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करे सा जो ये जरा दसा दो कि शबरा उस्ताद की आवाज़ क्लियर पहुँची पई है इतना मेरे को अनेयर क्लियर बहनी पई है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह दा करम सर कौन ते कितू गाल करे ने पैवे।

जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मैंने बता दिया, सदाम प्लाजे से मंसूर जनरल स्टोर, वहाँ चले जाए आप डेरा इस्माइल ख़ान से तो किसी भी दुकान से पता कर लें, नहीं तो अकबर प्लाजे में खलील भाई का अपना आउटलेट है इसका केसन का, वहाँ चले जाएँ, सिर्फ केसन वाली पक्की कहेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद हमजा किमटा फ्राम मूसा वाली पिपला, खूबसूरत प्रोग्राम, सब सुनने वाले को सलाम, हमजा लव यू हो गया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं नदीम खान शेख उतार से, शेख उतार वाल खुश आमदीद करता हुआ जी आया न उतरता हुआ हरक लराशे राजो दग से शेख उतार वाल जिंदाबाद, वडे दावे कर कर आगदा हाय तेरे नाल मैं तोड़ नहीं बैसा, हर दुख तकलीफ इच नाल रासा तेकू कल ना छोड़ ना वैसा, जिंदगी दे हर एक मोड़ उते तेरी इज्जत माण वदेसा, ते अज इज्जत अज जिंदरी तेरी लोड़ पै पई है हूँ आदा है यार सुचे सा। सलाम लाला जी, वालेकुम सलाम, मुबारक शाह से सिप्तान जामी, सिप्तान जामी साहब वेलकम कहते हैं आपको, खूबसूरत कलाम के साथ आपने एंट्री मारी है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपकी पक्की काम नहीं कर रही, मुझे डब्बी कोई हाँ मुझे डब्बी कोई तरीका बताओ मैं तला महमूद, आपकी पक्की काम नहीं कर रही मुझे दही दी तभी आप बिल्कुल परेशान नहीं हो ना, आप एक काम कीजिएगा तलहा, आपने परेशान होना ही नहीं है तला महमूद, ये नंबर लो, इस पे अभी कॉल करो, शो के दौरान कॉल करना चाहते हो शो के दौरान कॉल करो, और ये जो आपने बात कही है अगर काम नहीं किया इंशाल्लाह आपको पैसे वापस मिलेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने वज़न किया है और वज़न के बाद आप वो कर रहे हो तो बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन ये कोई क्या तरीका बता दे, क्या तरीका बता दे तला महमूद, ये नंबर नोट कीजिएगा, नंबर तलहा आपके लिए है 0344-936-3366, ठीक है, इस पर आप कॉल कीजिएगा 0344-936-3366, ठीक हो जी। हर वक्त उदास रहता हूँ तेरे बगैर, अब मिलने आ जाओ कि अब इंतज़ार की हिम्मत नहीं, दिलावर मलिक, दिलावर मलिक दावत कीजिएगा, हम आ जाएंगे, डोंट वरी, हम आ जाएंगे, एक मैसेज काफ़ी है दिलावर साहब, एक मैसेज काफ़ी है। होए होए होए होए होए होए याकूब कहो कर टांग से, सलाम वालेकुम सलाम याकूब, थैंक यू सो मच। और कौन है, शेख उतार टांग से, मास्टर फतीउल्लाह साहब कहते हैं किसी दाना को बोले अगर तू तीन बातों से आजिज है तो तीन बातें इख्तियार कर, और मोहतरम मैं कोशिश करता हूँ लेकिन आपका मैसेज जो है वो गड़मड़ हो चुका है, सो मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा। तीसरा वो है कि अगर तू रोज़ा न रख सकता है तो लोगों का गोश्त भी मत का, ये लिखा हुआ है आखिरी लाइन, इसकी ये आखिरी लाइन मुझ तक पहुँची है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, जी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, आप लोगों से इतनी सारी बातें कर ली हैं, तला अगर आपने नंबर नोट किया तो अच्छी बात है, नहीं तो मैसेज कर दीजिएगा, दोबारा से आपके लिए बता

फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम बिल्कुल उस मसले को देखा जाएगा, जांचा जाएगा और बिल्कुल भी आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप इस्तेमाल कीजिए केसन को। केसन क्या नाम है जी? वेट कम और क्या? याद रखें, केसन वेट कम पेट कम हर्बल फल, हर्बल फार्मूला पक्की। अच्छा, सिर्फ इतना अगर कह देते हैं दुकानदार को कि मुझे केसन वेट कम पेट कम वाली पक्की चाहिए या केसन पक्की चाहिए, तो वो आपको उठा के दे देगा। ठीक है, हो गया जी। नंबर बता रहा हूँ, आप इस नंबर पर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो दुकान तक जाना आपको अच्छा नहीं लगता या आप नहीं जा पाते, तो नोट कीजिएगा। नंबर है जी 0344-936-3366, 0344-936-3366। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम, आपकी आवाज़ अक्सर कट कट कर आती है और कालू की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आती, ज़रा चेक कर लिया करें। इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा होता है, इन छोटी छोटी कमियों की वजह से प्रोग्राम का मज़ा ख़राब हो जाता है। मोहम्मद सादिक नस पुलिस पोस्ट डला चश्मा रोड। अच्छा, आप 97.4 से अगर सुन रहे हैं तो ये कन्फर्म कर दीजिएगा, अगर नेट का मसला आ रहा होगा, और तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इंटरनेट का कोई इशू नहीं है और कॉलर का इंशाल्लाह आइंदा ये मसला नहीं आएगा कि वहाँ आवाज़ कम जाती है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इजाज़त चाहूँगा, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्यार बांटें, मोहब्बतें बांटें, नफ़रतों से खुद भी दूर रहें और अपने प्यारों को भी दूर रखें, अपने आसपास सफाई का ख़ास ख्याल रखें, वो सफाई चाहे आपकी ज़ाहिर की हो या फिर बातें की। इंशाल्लाह फिर चलते चलते कभी आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।

0: It's 5 o'clock.
1: It's 5 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर

0: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
1: बीमारी हक दे अविलाजी सुनत अमल दे, अविलाजी सुनत अमल दे।
2: पोस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चित्तासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जितली कड़ी दली यो, ढेर गर्जितली कड़ी दली यो।
1: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रौड़े औ द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेबना पल इलाज तरला सकवले शे
2: औ द नूरु मालूमात दे पारा प दग नंबर कॉल कवले शे
1: 0319 55 23 404।
3: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: Welcome to Radio Ahmad 88.4.
1: Your music, your request.
3: This is radio station, Radio Aman.
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारस होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

जंगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सराय नवरंग सराय नवरंग तशिकला हता सरोजो नु जंगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सराय नवरंग ब्रांच नंबर एक ब्रांच नंबर दो दादवाड़ दुकान नाम आप नाम दी वो इंशाल्लाह चिकला हरा सो माशाल्लाह एक नंबर ओरिजिनल प्रोडक्ट पता उस मिले भी दी का इश्मा नहीं लवा सह होता सो वाड़ो माशाल्लाह हर सत पता उस पर अवेलेबली वो एक नंबर प्रोडक्ट पता उस मिला भी दी माशाल्लाह कि चेर तो हाँ तासु प्रोडक्ट का खस्ती तस्ते रिजल्ट नहीं दर कराए नो पदे पोई सच दम माला सही प्रोडक्ट इस्तेमाल न दी नो देल वजे जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मनियारी बाजार सरे नवरंग तासु रजो इंशाल्लाह जखपल आल तनास जखपल डिप्टी का इंशाल्लाह चेर बहा दस इंदी सली चिमा दुकान ना चेरे चा गलत प्रोडक्ट उड़ी ला दो नंबर प्रोडक्ट उड़ी सका जिस दल तारा जो रेडू ता चेने घंटों घंटों प्रोग्राम ना खाऊँ नो इंशाल्लाह चिकुम कारोबार दा कारोबार अल्लाह ने बदा वाण चे हलाल ओ हलाल रिज़क करता नसीब का सका चिकल तो एक नंबर कारोबार कवे सही प्रोडक्ट हर सवे नो इंशाल्लाह ब्या ता कारोबार हलाल देर दा से पॉइंट दी उरु नहीं वो सह दा से खल्क देर स्तप छे अक्सर दा से निवी चेरा इसी शियारा जहांगीर भाई लका यो शायद इश्मा सर्फ दी बहरहाल दा से नोरा इश्मा हर्बल आयल दी नो बहरहाल तब सपा ता छे साढ़े छः पाँच सौ रुपये चुकुम एक सौ बीस एम एल दा यहाँ दे मनी कीमत था नो मुरा ब्या पी कीमत नो और कहू कहना लगा सर चिकु दुकानदार रूना दी ब्या अखपल चिकुम अगरी लेस होता हुआ ये कुमा मीना दा गाई अगा वो तेट दी गा बाद ब्या मुड़ा प्रोडक्ट खरसू और ब्या हाँ लगा चूंकि डेरा कम है गटे सर मुठ खरसू मुड़ो इसी पुलिस की गटे छे कुमा दा बरकत डेरी और ब्या हाँ दा से खल की चाह वही छे ना पदोरा रहा का पदोरा रहा का नो जो सिर्फ दा ना वहाँ छता सो जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मुनियारी बाजार सराय नवरंग तारा जो या सदप डुमेल भाई डुमेल तजो लदा से शरीफ भाई लकी मारवा चिदा दस सुम रहा दि मुड़ा कारी नूर खिताब रोरदा प करक छे तौस नास्ता दस चिकुम पटांग छे हाजी जरबत खान तौस नास्ता दस पडी खान छे उमर जन स्टोर दा चिकुम दरबार गली दा शिफ सुफा डागा तौस नास्ता नु दस सुमरा दुकानदार अनोडी दा तोल तौस दा एक नंबर ओरिजिनल प्रोडक्ट दर के उप कम कीमत सरे दर कई नु दुमरा अगौ सारा नोरा चिकुम आ मुनाफा दुमरा ज्यादा नहीं पछे नु बिल्कुल उस सारा छेड़ जखम को चाहो दुमरा कम मुनाफा जान दी शी वही छे बस लस पिंजर डेरी दी कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट खर्च को जबरदस्त खलको ता रोख शाय मुयसर कर नो खबर मकसद में दाओ कि सुम रहा सही कारोबार सो कई आहा डेर कम मुनाफे तो गोरी वो सही प्रोडक्ट खर्च सही नो दे दे पारा इंशाल्लाह तो कुम जी हाँ प्रोडक्ट का खोलो ओरिजिनल प्रोडक्ट का खोलो इंशाल्लाह गारंटी सारा ब्याह का नवरंग क्या खोलो नो जहांगीर कॉस्मेटिक स्टोर मुनियारी बाजार सारा नवरंग तरह सो एक नंबर ओरिजिनल प्रोडक्ट पता उस मिला।